जो आप जी ने श्लोक श्रवण किया है, इतने कबीर जी का जिक्र आया, कबीरा हमरा कबीरा मरता मरता जग मुख। भगत कबीर जी के श्लोकों विच भी गुरु अमरदास महाराज के कुछ श्लोक दर्ज हैं। इन्हों का भाव यह हुंदा है, कई बारी गुरसिख जो बाणी पढ़न वाले हुंदे ने उस सतगुरु के चरणों विच सवाल कर देंदे सन, महाराज भगत कबीर जी ने आए लिखे जां बाबा फरीद जी ने आए लिखे, जे कोई शक शुभा दिखाई दिंदा होवे ते गुरु महाराज फिर अपने वालों बाणी उचारण करके गुरसिखां दा भरम भुलेखा दूर करदे सन। हुण इत्थे मरण दी गल है, ऐसी मरनी केड़ी मरनी ये नहीं दर्शाया गया सी। हुण उहदा जवाब गुरु महाराज ने एक श्लोक उचारण करके दिता है ते गुरसिखां दी तसली करवाई है। इस ढंग दे नाल भगत बाणी ते गुरबाणी दा ओत पोत संबंध भी है, जिथे भी कोई कमी बेशी आउंदी है ते इहनू इस तरह ही समझना है। महला तीजा।

आपे मोनी वर्तदा आपे कथा ज्ञाना कौड़ा किसै ना लगई सबना ही भाना उस्तत बरन ना सकिय साध साध कुरबाना श्लोक महला पहला श्लोक महला पहला।

मन मैला है सब किच मैला, तन धोता मन हच्छा ना होए। एह जगत भरम भुलाया विरला बूझै कोय। जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुर दिया मोको एहो निदान। रहाओ सिद्धा के आसन जे सिखै, इंद्री वास कर कमाए। मन की मैल ना उतरै होमै मैल ना जाए। इस मन को होर संजम को नाही, विण सतगुर की सरणाए। सतगुर मिलिया उलटी भई कहना किछु ना जाए। भणत नानक सतगुर को मिल दो मरै, गुर कै शबद फिर जीवै कोय। ममता की मल उतरै एहो मन अच्छा होए। वडहंस महला तीजा नदरी सतगुर सेवियै, नदरी सेवा होए। नदरी एहो मन वस आवै, नदरी एहो मन वस आवै। नदरी मन निर्मल होए, मेरे मन चेत सच्चा सोए। एको चेत है ता सुख पाव है, फिर दुख ना मूले होए। रहाओ नदरी मर कै जीवियै, नदरी सबद वसै मन आए। नदरी हुकम बुझियै हुकमे रहै समाए। जिन जिहवा हर रस ना चखियो, जिन जिहवा हर रस ना चखो। सा जिहवा जल जाओ अन रस सादे लग रही। दुख पाया दूजै पाए, सबना नदर एक है आपे फर्क करे। नानक सतगुर मिलिया फल पाया, नाम वढाई दे। वढहंस महला तीजा माया मोह गुबार है, गुर बिन ज्ञान ना होई। शबद लगे तिन बूझिया, दूजै पर जब

करूपी, दूजै पाए करूपी, दुख पाव है आगै जाए, गुणवंती नित गुण रवै, हिरदै नाम वसाए, औगुणवंती कामणी, दुख लागै बिल लाए, सबना का पतार एक है स्वामी, कहना किछु न जाए, नानक आपे वेक कीतियन, नामे लयन लाए, वडहंस नानक आपे वेक कीतियन, नामे लयन लाए, वडहंस महला तीजा, अमृत नाम सद मीठा लागा, गुर सबदी साध आया, सच्ची बाणी सहज समाणी, हर जियो मन वसाया।

0: गुरमुख जात पात सच सोए, गुरमुख अंतर सखाई प्रभ सोए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख अंतर सखाई प्रभ सो होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द सच करनी सार, गुरमुख नानक परवारै साधार, वडहंस महला तीजा, रसना हर साध लगी सहज सुभाए, मन त्रिपत्या हर नाम त्याए, सदा सुख साचै शब्द विचारी, अपने सतगुर विटहो सद बलिहारी,
1: सदा बलिहारी,
0: अपने सतगुर विटहो सदा बलिहारी रहाओ, अखी संतोखिया एक लिवलाए, मन संतोखिया दूजा भाव गवाए, देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए, नाम परमल हृदय रहया समाए, नानक मस्तक जिस वड भाग।

मर जन्मै जम करे खुआर, नानक सेवट भागी जिन हर नाम ते आया, गुर परसादी मन वसाया, वडहंस महला तीजा, होमै नावै नाल विरोध है, दोए न वसहै इक ठाए, होमै विच सेवा ना होवई, ता मन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे।

0: प्रेम मन आसा गुर पूरा मेलावै मेरा प्रीतम हौ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ मैं अवगण भरपूर शरीरे मैं अवगण
1: ए शब्द पहला भी दस्या जा चुके है। दूजी बारी जिहड़ा दलैंकड़ है वह पप्पे नूं लग्या है ते पूर शब्द ही बनना हमेशा है भरपूर जां भरपूर ए नहीं बोलना दुबारा बोल दे
0: मैं अवगण भरपूर शरीरे हौ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती।

जिस आप बिखाले जिस नो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर सेती रलिया पढ़ंस महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद आज

जुग है जुगंतर, जुग है जुगंतर भगत तुम्हारे, कीर्त कर है स्वामी तेरा द्वारे, जप है ता साचा एक मुरारे, साचा मुरारे ताम जप है जाम मन वसावहे, भरमो भुलावा तुझ है किया जाम ए हो चुकावहे, गुर प्रसादी करहो कृपा ले हो जमहो उबारे, जुग है जुगंतर भगत तुम्हारे, बड़े मेरे साहेबा अलख अपारा, क्यों कर करो बेनंती हौ आख न जाना, नदर कर है ता साच पछाणा, साचो पछाणा नाम तेरा जाम आप बुझावहे, साचो पछाणा ताम तेरा, साचो पछाणा ताम तेरा जाम आप बुझावहे, दुख भूख संसार किए सहसा ए हो चुकावहे, बिरवंत नानक जाए सहसा बुझे गुर बीचारा, बड़ा साहिब है आप अलख अपारा।

गुरमति मन निर्मला रसना हर रस पीजै राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच सबद बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया सबदे काढ़ पीऐ पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागै रसना राम रवीजै नानक नाम रत्ते से निर्मल होर होमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया के वा पारा राम माया के वा पारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यो लागा बिस्टा माहे समाई जो धुर लिखिया सोई कमावै जो धुर लिखिया सोए कमावै कोए ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूरख कूक मुए गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुध ना काई राम गुरमुख एहो मन रंगिया दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे भंडारा गुरमुख होवै सोई बूझै सच सवारण हारा आपे मेले सो हर मिलै होर कहना किछु ना जाए नानक बिन नावै भरम भुलाया इक नाम रते रंग लाए वडहंस महला तीजा ए मन मेरिया आवा गौण संसार है अंत सच निबेड़ा राम आपे सच्चा बखस लए फिर होए ना फेरा राम फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा गुरमुख मिलै वडियाई सच्चा रंग राते सहजे माते सहजे रहे समाई सच्चा मन पाया सच वसाया सबद रते अंत निबेरा नानक नाम रते से सच समाणे बहुर ना पवजल फेरा माया मोह सब बरल है दूजै पाए खुआई राम माता पिता सब हेत है हेते पलचाई राम हेते पलचाई पुरब कमाई मेट ना सकै कोई जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई मनमुख अंधा तप तप खपै बिन सबदै सांत ना आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खुआई एहो जग जलता देख कै भज पए हर सरनाई राम अरदास करी गुर पूरे आगै रख लेवहो देहो वडाई राम रख लेवहो सरनाई हर नाम वडाई तुद जेवड़ अवर ना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुग जुग एको जाता जात सत संजम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो सबद बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर

संसारो जो तिस भावै समरथ सो थीऐ हीलड़ा एहो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख अपारो ताका अंत न पाया आया तिनका सफल भया है एक मन जिनी त्याया एक मन जिनी त्याया ढाहे ढाहे उसारे आपे हुक्म सवारण हारो जो तिस भावै समरथ।

0: सुन सिखिया साध ना आयो जिचर गुरमुख शब्द ना लागै सतगुर सेवै नाम मन वसै विच हो भ्रम भौ भागै जेहा सतगुर नौ जाणै तेहो होवै ता सच नाम लिव लागै नानक नाम मिलै वडियाई हर दर सोहन आगै पौड़ी गुरसिखा मन हर प्रीत है गुर पूजन आव है हर नाम वणंज है रंग सिओ लाहा हर नाम लै जाव है गुरसिखा के मुख उजले हर दरग है भाव है गुर सतगुर बोहल हर नाम का वड पागी सिख गुण सांझ कराव है तिना गुरसिखा कौ हो वारिया जो बहदया उठदया हर नाम त्याव है सलोक महला तीजा नानक नाम निदान है गुरमुख पाया जाए मनमुख घर होदी वथ ना जाननी अंधे भौक मुए बिल लाए महला तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख भ्रम भौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पाव है अन दिन हर बैरागी पौड़ी से गुरसिख तन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दृढ़ाया तिन होमै दुबिधा भन्नी बिन हर नावै को मित्र नाही विचार डिठा हर जनी जिन्ना गुरसिखा कौ हर संतुष्ट है तिन्नी सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम त्याए दे तिन्नी चढ़ी चवगण वन्नी सलोक महला तीजा मानमुख कायर करूप है बिन नावै नक नाहे अन दिन धंदै व्यापिया सुपनै पी सुख नाहे नानक गुरमुख होवै ता उबरहै नाहे ता बद्धे दुख सहाहे महला तीजा
1: उपर जिहड़ा पाठ आया सी इह चवगण जिस तरह पाठ भाई साहिब जी ने कीता इसे तरह ही करना है वावे दे उपर अदक ला के जो गुरमुख नाम त्याए दे तिनी चढ़ी चवगण वन्नी इस तरह पारा पाठ पाएगा
0: महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर सांत सदा सुख दर सच्चा सोबा पाहे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जाप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख बसिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किनै पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव ओस नो सुख ना उपजै भावै सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिलै सच्चे सिओ लिव लाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवै जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल ना होवई होमै शब्द जलाए कूड़ै की पाल विच हो निकलै सच वसै मन आए अंतर शांत मन सुख होए सच संजम कार कमाए नानक पूरा कर्म सतगुर मिलै हर जियो कृपा करे रजाए पौड़ी जिस कै कर दी बाण हर होवै तिस की मुठी विच जगत सब आया तिस को तलकी किसै दी नाही हर दीबान सब आन पैरी पाया मानसा केहो दीबान हो कोई नस भज निकलै
2: मानसा केहो
0: दीबान हो कोई नस भज निकलै हर दीबान हो कोई किथै जाया सो ऐसा हर दीबान वसिया भगता कै हिरदै तिन रह दे खोह दे आन सब भगता अगै खलवाया हर नावै की वडियाई करम प्राप्त होवै गुरमुख विरलै किनै त्याया सलोक महला तीजा बिन सतगुर सेवे जगत मुआ बिरथा जन्म गवाए दूजै पाए अत दुख लगा मर जमै आवै जाए विसटा अंदर वास है फिर जुनी पाए नानक बिन नावै जम मारसी अंत गया पछोताए महला तीजा इस जग मह पुरख एक है होर सगली नार सबाई सब घट भोगवै अलिपत रह अलख ना लखना जाई पूरा गुर वेखा लिया सबदे सोझी पाई पुरख है सेव है से पुरख होव है जिनी होमै शब्द जलाई तिसका सरीक को नहीं ना को कंटक वह राई
1: इथे पाठ आया सी
2: इलाकी आंदा सारे
1: ਲਖ ਉਹ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਾਠ ਪਰ ਉਹ ਅਲਖ ਹੋ ਗਿਆ।
2: ਸਭ ਕੱਟ ਭੋਗ ਵੈ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਵੇ ਖਾਲਿਆ ਸਬਦੇ ਸੋਜੀ ਪਾਈ ਪੂਰੈ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੇਵ ਹੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵਹਿ ਜਿਨੀ ਹੋਮੈ ਸਬਦ ਜਲਾਈ ਤਿਸਕਾ ਸਰੀਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋ ਕੰਟਕ ਵੈ ਰਾਈ ਨਹਿਚਲ ਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੇਰਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਈ ਅਨ ਦਿਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਵਿਗਸਿਆ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਨਾਨਕ ਵੇਖ ਵਿਗਸਿਆ ਹਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਪੌੜੀ ਜਿਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਸਦ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮੋ ਤਿਨ ਕਉ ਰਖਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਖਾਈ ਮਿੱਤਰ ਹਮਾਰਾ ਹਰ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਗੱਲਾ ਹਰ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਮਸਲਤ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕੁਲ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਰ ਦੀਆ ਹਰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਦਾ ਕਮਾਹੇ ਅਚਿੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸਬਦ ਸਮਾਹੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਖ ਮਦ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਆਪੇ ਪਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਕਉ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਭਇਆ।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया साहे सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो ता गावो हरी कीरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ई मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी।

जन्म मरण दुख जाए सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दैसाहो जिस पास बैठियां सोई है।

रहाओ इहो कुटुंब सब जिया के बंधन पाई परम बुला संसारा बिन कर बंधन टूटे नाही गुरमुख मुख द्वारा कर्म कर है

0: हर प्रभ है तिसकेरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई, सतगुरु सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाइया, एक नजर कर वेख्या सबूपारा, जिया पाओ तिया फल पाइया, नानक नाम वसै मन अंतरा, पिछो आप गवाइया, नानक नाम वसै मन अंतरा, पिछो आप गवाइया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी, सोट महला पंजेवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चो गिरद हमारे, राम नाम लागा जमल जाय कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ अवनासी, ताकि सेवन बिरथी जासी, आनंद कर है तेरे दासा, जा पूर्ण हुई आसा, बिलबन महला पंजेवा। ताती वावना लगई पार ब्रह्म शरण आई, जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई, राम नाम औ

जैसा दुखो बिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुट है निकट न जाइयो दूत श्लोक महला पंजेवा मन मह चितबो चितबनी उदम करूट नीत हर कीर्तन का आहरु हर देहो नानके मीत सोला राग गौड़ी दीपकी महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्त आखी है करते का हुई बीचार तित कर गाव हो सोहिला सेवर हो सिजनहार तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला ओं वारी जित सोहिला सदा सुख हुए रहाओ नैत नैत जी अड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पावै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावहु तेल देहो सजन असी सड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पहुचा सदड़ै नित पवन सदन हारा सिमरियै नानक से देह आवन रागा समहला पहला छे कार छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जय कर करते कीत हुए सुकारक वडाई तोए राव विश्वे चसिया घड़िया पहरा तिती वारी माहो हुआ सूरजे को रुत अनेक नान करते कह केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में ताल रव चंद दीपक मने तारका मंडल जनक मोती तुप मन आन लो पवन चबरो करे सगल बुन राय फूल अंत ज्योति कैसी आरती हुए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तुहे को सहस मुतन नायक तू ही सहस पद बिमल नानी एक पद गंध बैन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन हुए गुरसा की जोत प्रगट हुए ज्योतिष भावे सो आरती हुए हर चरण कवल मकरंद लोभत मनो अनदनो मोहे आही पियासा कृपा जल देह नानक सारंको होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूरी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हरली मंडल मंडाहे कर साधु अंजलि पुन वड्डाहे कर डंडौत पुन वड्डाहे रहाओ साकत हारा साधना जाणिया तिने अंतर होमे कंडा है ज्यो ज्यो चल है चुबै दुख पाव है जिमकाल सह है से डंडा है हर जन हर हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पव कंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शुभ कांड ब्रह्म।

0: गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो, नानक
1: बोले सुन हाले गाज गाज गाने दिया होने वाले यहाँ तथा बाबा दिन से ये चेतन उबान उपावे सुन के नियाले जो मैं फते पावे जिकारा ब्लॉमिन हाल हो वे तन तन सिल गुरु गोविंद सिंह जी मनु पावे कुकू सिंह के सच बाबे बोले सोने हाला
2: बोले सोने हाला
1: बोले सोने हाला
3: विकारे ने आलो तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी मनु पावे बोले सोले हाले
1: गजके बाबू गुरु गोविंद सिंह जी मनु पावे
4: बोले सोले हाल बोले सोले हाल
5: बोले सोले हाल
1: बोले सोले हाल
0: काल देग तेग देग तेग पंथ की राज करेगा चूलते निशान रहे चूलते निशान रहे लागते दीवान रहे लागते दीवान रहे बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आव ही वह चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अभा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण परनाम निरभय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भर नाडै अन डंड बाडै चाचरी छंद तवै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर माने आए चतर चक्कर दाने आए चाचरी छंद न सत्रै न मित्रै न परमंग न पितरै न करमंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रै न मित्रै परे है पवित्रै प्रथिसै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरनै के बिभूत करनै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आ सूक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रं बेहिनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं के अफबुल गुनाह हैं के साहान साह हैं के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहीम हैं के कर्मं करीम हैं के सर्वं कली हैं के सर्वं दली हैं के सर्वत्र माने आए के सर्वत्र दाने आए के सर्वत्र गौनै के सर्वत्र पौनै के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र राजै के सर्वत्र साजै के सर्वत्र दीनै के सर्वत्र लीनै के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र कालै के सर्वत्र पालै के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काजै के सर्वत्र राजै के सर्वत्र सोखै के सर्वत्र पोखै के सर्वत्र तराणै के सर्वत्र प्राणै के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र भानै के सर्वत्र मानै के सर्वत्र इंद्रै के सर्वत्र चंद्रै के सर्वं कलीमै के परमं फहीमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामै सलीखत मुदामै गनीमुल सिकस्तै गरीबुल परस्तै बिलंदुल मकानै जमीनुल जमानै तमीजुल तमामै रुजूअल निदानै हरी।

फुल अजीमै रजायक यकीनै अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अभंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनी मुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदि अनूप हैं समस्त पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्ब भागे सुसर्बा अनुराग त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है किनरकं परनास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है अतंद है अबंध है अभगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छांद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रै न पुत्रै न सत्रै न मित्रै न तातै न मातै न जातै न पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जुहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरी फुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुर्रत जमाल हैं के अचलंग प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं के अजब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा हैं के आत्म प्रभा हैं के अचलंग अनंग हैं के अमितो अपंग हैं मद पार छंद त्वय प्रसाद मुन मन परनाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण परनाम मुन मन सलाम हर नर अखंड
ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣ ਗਣ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਣ ਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਧਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਬਾਹੁ ਏਕੈ ਸਦਾਹੁ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨ ਛਿਜ ਗਾਤ ਆਜਿਜ ਨਾ ਬਾਤ ਅਨ ਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨ ਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨ ਥਟ ਅਪਾਰ ਆ ਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨ ਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੂਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾਲੈ ਹੈ ਅਰ ਕਾਲੈ ਹੈ ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿ ਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਉਬਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹੈ ਜਗ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸਿਆ ਹੈ ਸਰਬ ਨਾਸਿਆ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਬਿਸਵੰ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲ ਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ ਅਜੱਪਾ ਜਪ ਹੈ ਅਥੱਪਾ ਥੱਪ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧਰਨੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲ ਕਾਇਕ ਹੈ ਬੇਸਵੰਗ ਭਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਾ ਹੈ ਨਿਰਿਪ ਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰ ਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪ ਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬ ਆਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਾਮ ਸੰਗ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁੱਧ ਜੁੱਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦੰ ਬਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਅਭੰਜ ਅਲਖ ਅਭਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਭੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾਹ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰ ਅਪਰਮੰ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪਰਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪਰਨਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰ ਬਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪਰਨਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਬਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪਰਨਾਸੀ ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰਿਅੰ ਕਰਿਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੋਯੰ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪਰਨਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ
दुकालं परनासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपुते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सुवैये। सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के। सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के। सारे ही देश को देख रहयो मत को न देखियत प्राण पति के। श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के। माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत। पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बिद। न्यावत सीस ना जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत। अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को। बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के। सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख पवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे। तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखाय। वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखाय। पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखाय। श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखाय। सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलाएंगे। भारी गुमान परे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलाएंगे। तोर अरीन मरोर मवासन मत मतंगन मान मलाएंगे। श्रीपत श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलाएंगे। वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार। पछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक जाचिक अनेक सुवेक देवैया। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर ना देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो। नात फिरियोलिये सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहों सुन देहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो। को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
कोउ बुतान को पूजत है पास, कोउ मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह पात साही दसवी, कबियो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिखे सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखे हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है, आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास ने वरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिया हो रक्षा, राख लेहो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को साव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पार कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकरख करत हो कबहूं, तुम मैं मिलत देह धार सबहूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निरिबकार निरलंब, आदि अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जा को भेव न पावत बेदा, ताकाओ कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव काओ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी,
कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबार असिखे संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रान काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जावन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टराय तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख ना तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गुंग जो याहे, सो रसना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना, तिन नर के रहै हो जो या की एक बार। चाओ पई को कहै, चाओ पई संबत सतरह सहस पनिजै। अर्ध सहस पुन तीन कहिजै, भादरव सुदी अष्टमी रविवारा। तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहै मत एक ना मान्यो। सिमरित शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहै हम एक ना जान्यो।

तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुर दर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसा हो कुरसा हो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सलोक दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन है

दयाल पुरख भगवान है, नानक लिपत ना माया, पाहे बलंदड़ी बुझ गई, रखंदड़ो प्रभ आप।

सत्संग जी अंतर्गत होके नाम नूं सुनना करना जीओ नाभ चक्कर ते सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन है इथों सुन सकते हो जिन्हां प्राणियों नूं नाम नहीं सुन आए कोशिश करते पर सुनाई नहीं दिंदा उन्होंने नाल दी नाल स्वासा नाल स्वास क्रास सिमरन करना जीओ स्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना स्वास बाहर नूं आंदा गुरु फील करना इस तरह स्वास क्रास सिमरन करना जीओ अंतर्गत होके जिन्हां प्राणियों नूं शब्द सुनदे आ उन्होंने शब्दों विच भी ध्यान रखना जीओ दो मिनट मगरों फिर आपां रसना नाल जपांगे जीओ नेत्र बंद रखने आ जी।

प्यारी साध संग जियो। अगले समय वास्ते बहुत ही सत्कार योग बाबा महेंद्र सिंह जी पढ़ी वाले आप संगतां नूं इसे तरह ही गुर शब्द विचार दे नाल जोड़ना करनगे। होइयां भुला चुका रिखिमा बख्श करो। बुलाओ जी फतेह सारी संगत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पात साह सिर साहांद जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सलोक

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बेखा ही, माया मोह परम पै भुले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो सरनाई, आप संगतां नूं गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करा रहे सन। भाई जगदीप सिंह जी, श्री दरबार साहिब वालिआं दा रागी जथा,

मन चौ पया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे।

तेरी तुम मात पिता हम बारिक तुमरी की रूपा मैं सुख कोई ना जानी तुमरा उचे ते उचा सगल समग्री तुमरा सूतर तुम ते हो ए सो तुमरी गत मेत तुम ही नानक दास सदा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लाइन ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास सिंह हुई सहाय हरजन हर गोबिंद नू समराऊ श्री हर आए श्री हर किशन ते आईऐ जिस डठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियां घर नौन दे आवै ताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहेगुरु पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु।

अगम आगाद ऊच आपार जो तुद सेव है तिन भाव दुख नाही गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसै सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप।

इतनी ही हाजिर प्रवान करने जी होइया पुला चुका देखे मैं बख्शन सासन बख्शन हार हो आओ सब गज के पते बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकरख करत हो कबहूं तुम मैं मिलत देह धर सबहूं जेते बदन सृष्ट सब तारै।